0: प्रेरणा ज्यादा काम के लिए कहते हैं प्रेरणा कानून दूसरा क्या अपन भाई जब मैं आप बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हैं जब से हम लोग के हाथ में आने का था आने का नाम था तो तू काम के लाने सारा प्रसारा सभी बातों के लाने इंडियन लोग आते हैं नमस्कार.
1: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
0: Perlu berdasarkan,